इकबाल मियां, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ। वस्त्र कंधे पर रखे ओम अग्ने नय सुप्ताराय अस्मान विश्वान देव वैनो।

स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। आज के आप दोनों पति पत्नी हो चुके हैं।

हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, यानी यानी यानी प्यार हो गया।

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा